5:35 होने को है और आप सुन रहे हैं भोर सुहानी, मेरी यानी अर्चना बिसारिया के साथ। अगला गीत हमने लिया है फिल्म शागिर्द से और इस गीत को भी आवाज़ दी है लता।

0: FM Rainbow 101.9.
1: यस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। यस अब स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है 10:14 और हम अपना शो स्टार्ट करेंगे। यस आज का दिन लाइक देर आर लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस, वेरी इंपॉर्टेंटली लॉट मेनी थिंग्स टू डिस्कस। लाइक आज का दिन में इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे है और बहुत सारी इंटरेस्टिंग से डेज मनाए जा रहे हैं। लाइक इट मे बी अ मैच मेकर डे, नेशनल मैच मेकर डे, नेशनल ईट आउटसाइड डे और मैनी ग्रेट पर्सनैलिटीज का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे हम। यस स्टे ट्यून टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी एंड अबारा है शेक इट ऑफ बाय ट्राइलर शिफ्ट। स्टे ट्यून्ड।

यस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी एंड नमस्ते हेलो आदाब। यस मैंने बोला था कि बहुत सारे ग्रेट ग्रेट पर्सनालिटीज का बर्थडे है आज। पहला पर्सन है युवन शंकर राजा, द ग्रेट इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर। इन्होंने बहुत सारे मेलोडियस गाने हमारे इंडस्ट्री के लिए दिए हैं। इट मे बी हिंदी इंडस्ट्री, हॉलीवुड, बॉलीवुड एंड तमिल सॉन्ग्स बहुत सारे हैं। तेलुगु सॉन्ग्स में भी बहुत ब्यूटीफुल गाने हैं। यस यस हैप्पीएस्ट बर्थडे सर। आप आ रहा है एक ब्यूटीफुल सा गाना फ्रॉम राजा नटवर लाल। सुनते रहेगा, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। और आज का दिन बहुत ही खास है। हर साल 31 अगस्त को पूरी दुनिया इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व करता है। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ एक अवेयरनेस डे के बारे में बात नहीं करेंगे, आज बात करेंगे जिंदगी की, उम्मीद की, दोस्ती की और उन लोगों की जो मुश्किलों से लड़कर फिर से अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत देते हैं। कभी कभी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस होता है, मैं समझ सकती हूँ। एग्जाम्स का प्रेशर, जॉब की टेंशन, फैमिली एक्सपेक्टेशंस, रिलेशनशिप इश्यूज और कुछ लोग इन सब चीज़ों से बचने के लिए गलत रास्तों की तरफ चले जाते हैं। लेकिन याद रखिए, प्रॉब्लम्स टेम्पररी नहीं होती, लेकिन हमारी ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है और इसलिए आज का हमारा मैसेज है, चूज लाइफ, चूज होप। यस, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

0: FM Rainbow 101.9.
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM Rainbow with me RJ वैष्णवी. Yes, दोस्तों, कभी आपने नोटिस किया है, जब हम बच्चे थे तब बहुत खुशी थी. खुशी भी बहुत सिंपल थी. एक आइसक्रीम काफी था, एक क्रिकेट मैच, एक बारिश का दिन और बस हम खुश हो जाते थे. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, लाइफ कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा है. टारगेट्स, डेडलाइंस, कंपैरिजन, सोशल मीडिया प्रेशर्स, पीयर प्रेशर, और इसी प्रेशर में कभी कभी लोग ऐसे डिसीशंस ले लेते हैं जो उनकी हेल्थ और फ्यूचर दोनों ही अफेक्ट हो जाते हैं. आज का दिन हमें याद दिलाता है कि हेल्प मांगना वीकनेस नहीं होता है. अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो किसी ट्रस्टेड फ्रेंड से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, टीचर से बात कीजिए, काउंसलर के पास जाइए. काउंसलर्स बहुत ही अवेलेबल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है. हर अंधेरी का रात के बाद नई सुबह आती है. Yes, stay tuned to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi and aa raha hai ek beautiful sa gana, More Than World. Stay tuned.

Yes, welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. मैंने कहा था कि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे और मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, जय श्री राम बोल रहे हैं. जय श्री राम सबको. यस, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज है, पढ़ो क्या? यस, सरवर अली साहब ने रेडियो का एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो भेजा है जहाँ मैं बात कर रही थी. यस, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम. मैंने बोला कि वेरी गुड मॉर्निंग सर. यस, आप भी मुझसे बात कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर. आपको पता ही होगा हमारा व्हाट्सएप नंबर, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगी, 0402323482. यस, व्हाट्सएप मी और कहिए कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग से बात करेंगे हम. यस, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो. अब आ रहा है एक लाइक डिस्को सा गाना जैकी चैन से. यस,

यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। यस, आप क्या आप जानते हैं रिसर्च के मुताबिक रेगुलर एक्सरसाइज, म्यूजिक, मेडिटेशन और क्वालिटी स्लीप स्ट्रेस लेवल्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकता है। मतलब कभी कभी सॉल्यूशन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता जितना हम सोचते हैं। एक अच्छी सी वॉक, एक अच्छा गाना, एक अच्छी कॉन्वर्जेशन और मूड बेहतर हो सकता है। इसलिए आज का चैलेंज है, आज किसी एक दोस्त को कॉल कीजिए, बस पूछिएगा, कुछ भी मत करो, बस पूछिएगा हाउ आर यू रियली डूइंग। शायद आपकी वो एक कॉल किसी के दिन को बेटर बना दे। और दोस्तों, कभी कभी किसी को बचाने के लिए सुपर हीरो बनना ज़रूरी नहीं होता है, बस सुनना ज़रूरी होता है। यस, वी नीड अ लिजनर टू एक्सप्रेस आर फीलिंग्स। यस, इवन एफएम रेनबो के लिए लिजनर्स भी बहुत ज़रूरी हैं, और हम आपको सुनते हैं, आप हमको सुनिएगा। यस, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो। अब आ रहा है एक दिल चोरी सा गाना। यस, स्टे ट्यून्ड।

Yes, welcome back to Akashwani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. Yes, आजकल सोशल मीडिया पर हम दूसरों की सक्सेस देखते हैं. किसी को जॉब मिल गई, किसी ने स्टार्टअप शुरू कर दिया, किसी ने फॉरेन यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, और फिर हम सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक वॉट एम आई डूइंग हियर सिटिंग अलोन. लेकिन दोस्तों, हर किसी का जर्नी अलग होता है. आप चैप्टर 2 में हो सकते हो और कोई चैप्टर 10 में हो सकता है. कंपैरिजन से कॉन्फिडेंस कम होता है, तो इसलिए प्रोग्रेस से कॉन्फिडेंस बढ़ता है. इसलिए खुद को कल वाले वर्षन से कंपेयर कीजिए, दुनिया से नहीं. स्ट्रेस बस्टल चैलेंज, चलिए एक फन चैलेंज करते हैं. आज घर पहुंचने के बाद 15 मिनट्स वॉक, 10 मिनट्स म्यूजिक, 5 मिनट्स ग्रैटिट्यूड, और देखिए मूड में कितना डिफरेंस आता है. कभी कभी हैप्पीनेस एक्सपेंसिव नहीं होता है, बस सिंपल हैबिट्स में छुपी होती है. यस, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी. एंड आ रहा है मेरा फेवरेट गाना, उफ तेरी अदा.

Yes, welcome back to Akashwani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. Yes, take it easy, Urvashi. Yes, take it easy बहुत आसान शब्द है पर उसकी उसका मीनिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बहुत बड़ा मीनिंग है. लाइक कुछ भी हो लाइफ में टेक इट ईजी करके मूव ऑन कर लेना, नहीं तो लाइक उधर ही रह जाएंगे. हाँ कि ना? Yes, stay tuned to Akashwani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi, and there is a beautiful song coming ahead. Stay tuned.

Yes, welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. Yes, आज मैंने कहा था कि मैं और एक डे के बारे में बात करूँगी, वो है नेशनल मैच मेकर डे. यस, हर इंसान के ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो उसकी पूरी कहानी बदल देती है. कुछ लोग हमसे अचानक मिलते हैं, कुछ तकदीर मिला देता है, और कुछ मुलाकातों के पीछे होता है किसी अपने का प्यार, विश्वास और एक सुंदर सोच. आज 31 अगस्त को हम मना रहे हैं नेशनल मैच मेकर डे. ये दिन उन सभी लोगों को समर्पित है जो दिलों को जोड़ने का काम करते हैं. कभी माँ बाप, कभी दोस्त, कभी रिश्तेदार, कभी गुरु और कभी ज़िंदगी खुद एक मैच मेकर बन जाती हैं. यस, आज हम बात करेंगे रिश्तों की, भरोसों की, पहली मुलाकातों की, यादों की, और उन लोगों की जिन्होंने दो जिंदगियों के एक सफ़र में बदलने का एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया है. तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज का सफ़र होगा मुस्कुराहटों से भरा, यादों से सजा हुआ और दिल को छू लेने वाला. कुछ लोग सिर्फ लोगों को नहीं मिलाते, वो दो परिवारों को जोड़ते हैं, दो सपनों को एक मंजिल देते हैं और दो जिंदगियों को एक कहानी बना देता है कि ना. मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचते हो इस बारे में, लाइक मैच मेकर डे के बारे में और मैच मेकर्स के बारे में. यस, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0402324822 और आ रहा है एक ब्यूटीफुल सा गाना, तुझे देखा तो. यस, लव वाला गाना हमारे लव बर्ड्स के लिए और लव डे के लिए. यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.

तुझे देखा तो जाना सनम, यस लव का माहौल सेट हो गया है। फिर भी मैं एक बार हम मारे चटपटी गाने को प्ले करना तो बनता है यस। सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। आ रहा है टिप टिप बरसा पानी, यस स्टे ट्यून।

टिप बरसा पानी। यस, अगस्त का मौसम चलने लगा है और आज लास्ट डे ऑफ अगस्त है। मुझे तो बहुत ही ऐसा ऐसा लग रहा है, लेकिन बारिश ही नहीं गिरी अगस्त में हमारे हैदराबाद पे। आपको, आपके पास गिरी है क्या? अभी तो लाइट सा गिर रहा है बारिश बाहर। यस, बने रहे हैं हमारे साथ और अब आएगा न्यूज़।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Bishkek on a two-day visit to Kyrgyzstan to attend SCO summit and meet several SCO leaders on the sidelines. President Draupadi Murmu to address combined convocation of National Institute of Fashion Technology in New Delhi today. Finance Minister Nirmala Sitharaman says India is likely to sustain economic growth rate of 7% or more in financial year 2026-27. The Indian Navy commissions INS Nipun, the second diving support vessel of the Nistar class at Naval Dockyard, Mumbai. Death toll in Nepal flash flood rises to 794, while more than 2,500 people are still missing. US forces strike Iranian rocket launchers on Larak Island in Strait of Hormuz. Iran attacks US bases in West Asia in retaliation. Odisha faces another spell of heavy to very heavy rainfall today, with the weather system over the northwest Bay of Bengal continuing to influence the state. In football, India under 20 men's national team to begin their AFC under 20 Asia Cup China 2027 qualifiers campaign against Syria at the Dostalik Stadium in Tashkent today. And in women's cricket, India beat Thailand by 94 runs in their opening match of T20 Asia Cup 2026 in Dubai. Those were the headlines for this hour. Stay with us on Akashwani FM Rainbow 102.6 MHz.
2: चर्चा का मुख्य विषय भारत में 3M की भागीदारी को और मजबूत बनाना था। नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद त्रिशूली 3A सहित कई पनबिजली परियोजनाओं की सुरंगों में फंसे सैकड़ों लोगों को निकालने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: भारत और चीन के विशेषज्ञों सहित बचाव दल सुरंग के अंदर फंसे लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार की इस आपदा में नेपाल में मृतकों की संख्या 794 हो गई है। तिब्बत में आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या 16 है, जबकि 546 लोग लापता हैं। त्रिशूली नदी में फिर से बाढ़ के कारण मध्य नेपाल में एक झूलता हुआ पुल बह गया। पुल के बह जाने से गंडकी ग्रामीण नगर पालिका 7 और 8 के निवासियों का पृथ्वी राजमार्ग से संपर्क टूट गया है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT के संयुक्त दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर देश भर के 18 NIFT परिसरों से पास होने वाले विद्यार्थियों को डिग्रियां दी जाएंगी। भारतीय नौसेना ने आज मुंबई के नौसेना गोदी में निस्तार श्रेणी के दूसरे डाइविंग सपोर्ट पोत INS निपुण को बेड़े में शामिल किया। समारोह में नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने कहा कि INS निपुण नौसेना के पानी के नीचे चलाए जाने वाले विशेष अभियानों में महत्वपूर्ण साबित होगा। विशाखापट्टनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया INS निपुण गहरे समुद्र में चलाए जाने वाले गोताखोर और जटिल अभियानों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है।

Yes, welcome back to Akashvani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. Ab tak aapne suna hai news in Hindi and English. Yes. दोस्तों, रिश्तों की परंपरा हमारे समाज की सबसे सुंदर विरासतों में से एक है। एक समय था जब घर के बुजुर्ग अपने अनुभव और समझ के बल पर रिश्तों को आगे बढ़ाया करते थे। फोटोग्राफ्स धक से आते थे, चिट्ठियाँ लिखी जाती थी और पहली मुलाकात एक यादगार पल बन जाती थी। आज डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी से दूरियाँ को कम कर दिया है। वीडियो कॉल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, लाइक सेपरेट सेपरेट, और मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स ने लोगों को नए तरीकों से जोड़ने का काम किया है। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, हर रिश्ता भरोसा और सम्मान की बुनियाद पर ही टिकी है, टिका रहेगा भी। यस, किस्मत रिश्ते दिखा सकती है, लेकिन रिश्तों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समझ, सम्मान और संवेदनशीलता जरूरी होता है। यस, आप क्या कहते हैं इस बारे में? यस, मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा मैसेज। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0402324822। आपको पता है, फिर भी मैं बता दूंगी। यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आर जे वैष्णवी। यस, अब हम लव के बारे में बात कर रहे, तो हमारे स्वीट हार्ट किड्स हार्ट्स के लिए मैं स्वीट हार्ट गाना तो बजा ही दूंगी ना। यस, स्टे ट्यून्ड।

Yes, welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. हम बात कर रहे थे कि मैंने पूछा है आपसे, आप क्या ओपिनियन क्या है आपका इस मैच मेकर डे और मैच मेकर रिश्तों के बारे में, ये सब क्या आप क्या सोचते हो बोल के. मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून वैष्णवी जी, वेरी गुड आफ्टरनून वैष्णवी जी बोल के. यस, वेरी गुड आफ्टरनून जी, सबको गुड आफ्टरनून, जय श्री राम बोल रहे थे फिर से. यस, जय श्री राम. और एक पता नहीं कौन है पर बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज उन्होंने भेजा है मुझे. कह रहे कि शादी एक दो दिल की बात नहीं है, शादी दो परिवार की बात है, दो खानदानों की बात है. तो अगर एक इंसान भी अच्छा नहीं निकलेगा तो शादी का तो बर्बादी है बोल के बोल रहे थे सर. यस, आप ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझसे शेयर कर सकते हो. और एक फिर से ब्यूटीफुल सा मैसेज आया कि हुड़ा बाबा नगर से, हाय वैष्णवी जी बोल रहे हैं. हेलो सर, कैसे हैं आप पूछ रहे हैं. मैं बढ़िया हूँ सर. सबसे रिश्तेदार दुबई, अमेरिका, लंदन में होते हैं और हमारे रिश्तेदार ब्लॉक लिस्ट में. एक सॉन्ग लगाइए ना प्लीज़, तू ही मेरी सब है. यस, कह रहे हैं कि रिश्तेदार ब्लॉक लिस्ट में होते हैं. आप किससे सहमत हो, ब्लॉकलेस में होते हैं क्या रिश्तेदार? यस, मुझे बताइएगा. थैंक यू सो मच हुड़ा बाबा जी. यस यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी.

यस तेरे मस्त मस्त दोनों। यस हमारे यहाँ प्यार का माहौल चल रहा है और मैंने ही एक जबरदस्त गाना चलाया है, तेरे मस्त मस्त दोनों। यस नैन का मतलब आइस है क्या ना। ये तब हमारे प्यार हमारे आँखों से बहुत अच्छी से पता चल जाएगा किसी को भी, और उनकी आंखों से हमें पता चल जाएगा कि उनके उनको हमारे ऊपर प्यार है कि नहीं। इसलिए इस गाने को बहुत फेमस कर दिया उस ज़माने में, और इस ज़माने में भी बहुत सुनते हैं इस गाने को, तेरे मस्त मस्त दो नैन फ्रॉम दबंग। यस मैंने जस्ट नाउ एक मैसेज पढ़ा था कि ब्लॉक लिस्ट में है। यस है कि ना, मेरे यहाँ भी रिश्तेदार ब्लॉक लिस्ट में भी हैं, उनके यहाँ हुडा के यहाँ भी ब्लॉक लिस्ट में रिश्तेदार

हैं कते, उन्होंने एक गाना पूछा था, तू ही मेरी सब है बोल के, मैं अब वो प्ले कर रही हूँ हुडा, ये आपके लिए है गाना, आपका ख्वाहिश हमारे सलाखों के ऊपर। यस, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

यस आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी। हम बात कर रहे थे नेशनल मैच मेकर डे के बारे में। यस दोस्तों, हर घर में एक ऐसी कहानी ज़रूर होती है जो बार बार सुनाई जाती है। किसी की शादी एक दोस्त ने करवाई, किसी की मुलाकात एक टीचर ने जराई हुई है, किसी को जीवन साथी एक रिश्तेदार ने ढूंढ कर दिया, और कुछ लोग तो मजाक मजाक में पेड़ बन गए, कपल बन गए। यही तो ज़िंदगी की खूबसूरती है। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं, लेकिन कई बार उस कहानी का पहला पन्ना किसी और के हाथों लिखा जाता है। यस आज का सवाल, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिन्होंने आपको किसी खास दोस्त, जीवन साथी या मेंटोर से मिलवाया हो? हमें ज़रूर बताइएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0402323482। यस और एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछना था, रिश्ता बनाना आसान

हो सकता है, लेकिन रिश्ता निभाना एक कला है, और जो लोग दो लोगों को मिलाते हैं वो अक्सर खुद कहानी का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन कहानी उनके बिना पूरी भी नहीं होती। इस लाइन को, इस शायरी को आप कंटिन्यू करो, मैं उसको पढ़ के बहुत खुश हो जाऊंगी। क्या बोलते हो? यस, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी।

Yes, welcome back to Akashavani Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. हम अब तक बहुत सारे मीठे मीठे रिश्तों के बारे में बात करी है और नेशनल मैच मेकर डे के बारे में बात करी है, माँ बाप के बारे में बात करा है, प्यार के बारे में बात करा है और प्यारी प्यारी सॉन्ग्स भी सुने हैं. अब आ गया है एक डिफरेंट सा डे है आज, क्रेजी वाला डे है, नेशनल ईट आउटसाइड डे. हम पहले से ही बाहर का खाना पसंद करते हैं, अभी एक डे आ गया है उसके लिए बोले तो और भी खुश हो जाएंगे हमारे आउटसाइड ईटर्स को. यस, मैं भी एक व्यक्ति हूँ उस लिस्ट में, लिस्ट में आ जाऊँगी मैं भी, बिकॉज आई लव टू ईट फूड एंड बाहर भी खाना बहुत पसंद है. तो इसी बारे में हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा एट 1:00 PM ओनली ऑन 101.9 FM रेनबो. यस, उसका फ़ोन नंबर्स भी मैं बता दूंगी और टॉपिक भी बहुत जल्द मैं बता दूंगी और हमारा फ़ोन लाइंस 1:00 से शुरू हो जाएंगे. और आप मुझसे बात करने खरीदना चाहते हो व्हाट्सएप पे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0402323482. अब बात करेंगे नेशनल ईट आउटसाइड डे के बारे में बहुत जल्दी. स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो with me RJ Vaishnavi.

Yes, welcome back to Akashavani, Hyderabad 101.9 FM Rainbow with me RJ Vaishnavi. और मैंने कहा कि आज National Eat Outside Day है, तो दोस्तों खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं होता बल्कि यादों, रिश्तों और खुशियों का एक खूबसूरत संगम होता है. कभी फैमिली के साथ संडे ब्रंच हो या कभी दोस्तों के साथ चाय और समोसा, कभी ऑफिस आउटिंग के लंच पार्टी और कभी एक छोटी सी रोड साइड चाय जो पूरे दिन को यादगार बना देती है. ये दिन हमें घर के बाहर निकल कर नए स्वादों को एक्सप्लोर करने और अपनों के साथ वक्त बिताने और फूड कल्चर को सेलिब्रेट करने की याद दिलाता है. आज के अगले घंटों, एक घंटे में हम ईट आउटसाइड डे के बारे में बात करेंगे एंड विल बी हैविंग आर रेनबो लाइव फोन इन प्रोग्राम. लाइक हेलो रेनबो, आपको पता ही है, और हैदराबाद के लजीज स्वादों की और उन खास फलों की जो खाने के साथ और भी खास बन जाते हैं. तो अब लंच टाइम है, लंच का प्लेट पकड़ के मेरे साथ हमारे इस गाने को सुनते रहिए और हमारा FM रेनबो को कॉल करके बात करिएगा. यस, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी. अब आ रहा है ऐसी जिंदगी है हमारी के लिए.

0: हाउस पार्टी, एक बहुत ही फेमस गाना है। हम भी अभी पार्टी करने वाले थे, ईट आउटसाइड के बारे में बात करते करते। यस, वी हैव अ कॉलर ऑन एयर। वेर हेलो रेनबो।
1: हेलो
0: हेलो,
1: जी मैडम, कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो?
1: मैं ठीक हूँ। मैं दीपू फ्रॉम मेहंदीपट्टनम।
0: अच्छा, नमस्ते दीपू जी, बोलिए, आपने टॉपिक सुना है?
1: जी हाँ, सुना है, लेकिन आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए हिंदी में।
0: आपका फेवरेट डिश क्या है जब भी आप बाहर जाते हो खाने के लिए, बोल के पूछी थी मैंने।
1: जी हाँ, मेरा फेवरेट डिश, वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन के हिसाब से मैं हैदराबाद में जब जाता हूँ, यहाँ पे कुलचा बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं पता नहीं मैं रेस्टोरेंट का नाम ले सकता हूँ या नहीं। ठीक
0: नहीं सर, आप कुलचा खाने
1: है,
0: की
1: तो मैं लोकेशन तो बता सकता हूँ, जो लोअर
0: या
1: टैंगमेंट के पास है।

0: मैं भी गर्ल हूँ और कटलिस हमारा प्यार है. क्या क्या कहते हो आप? यस, स्टे ट्यून्ड टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 एफएम रेनबो विद मी आरजे वैष्णवी. एंड एक डेंचा सा गाना आ रहा है, स्टे ट्यून्ड.
1: King Khan, you're your honey singer.

यस, लुंगी डांस लुंगी डांस। कितने जनों को ये गाना बहुत पसंद है, मुझे कह देंगे तो बहुत ही खुश हो जाऊंगी मैं भी। यस वी हैव नेम छप्पे नू।

सुन रहे हो ना, कितने बड़े बड़े फैंस हैं आपको. लाइक आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट. या अभी आ रहा है आफरीन आफरीन, विश बाय जय मून वॉकर. स्टे ट्यून टू आकाशवाणी हैदराबाद 101.9 FM रेनबो विथ मी आरजे वैष्णवी.

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, FM 101.9 MHz पर, और हमें आप सुन रहे हैं मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।
1: FM रेनबो 101.9
0: 101.9 FM रेनबो आप सुन रहे हैं, और वक्त हुआ चाहता है उर्दू प्रोग्राम नए रंग का। सामाइन, नए रंग लेकर हम हाजिर हैं। नित नए प्रोग्रामों का ये संगम होता है, नए रंग प्रोग्राम जिसे कहा जाता है, और इसके तहत आप मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स इसमें सुन सकते हैं, यहीं पर यानी आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर। तो चलिए बिला ताखिर नित नए रंगों से सजा प्रोग्राम नए रंग की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक अच्छी बात समाप्त कीजिए सामाइन। रिश्तों की अहमियत आज के दौर में कहीं खो सी गई है। हमें रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए। रिश्ते वो सरमाया हैं जो वक्त के साथ मज़ीद कीमती होते जाते हैं। आज की सहूलतों और मसरूफियात के बावजूद अगर हम इन रिश्तों को मजबूती से कायम रखें तो यही रिश्ते कल के दिन हमारे सबसे बड़े सहारा और क़ुव्वत बनेंगे। मुश्किल वक्त में यही रिश्ते हौसला और सहारा देते हैं। कामयाबी के सफ़र में यही रिश्ते खुशी को बांटने का ज़रिया बनते हैं। बुढ़ापे में यही रिश्ते तन्हाई को मोहब्बत से भर देते हैं। रिश्ते हैं जिंदगी का असल सरमाया, वक्त के साथ ये और निखरते हैं। कल के दिन में यही रिश्ते काम आएंगे, हौसला, सुकून और मोहब्बत बन जाएंगे। इन्हें संभालो, इन्हें निभाओ, कि यही रिश्ते जिंदगी का सहारा हैं। रिश्ते दरअसल एक अमानत हैं जो हमें वक्त के साथ वापस मिलती हैं। अगर हम आज इन्हें मोहब्बत, एतमाद और खुर्बत से संभालें तो कल यही रिश्ते हमारी ज़िंदगी को सुकून और खुशी से भर देंगे। तो सामाइन, रिश्तों पर बात की गई, रिश्तों की अहमियत को समझें और रिश्तों को निभाएं, क्योंकि यही रिश्ते कल आपके साथ होंगे, आपके मुसीबतों में आपके साथ खड़े होंगे। रिश्तों को निभाना ज़रूरी है। इसी मैसेज के साथ सामाइन, आइए शुरुआत करते हैं नए रंग प्रोग्राम की।

गीत सुरीले गाता जा इस सिलसिले के तहत फिल्मी नगमे पेश किए जाएंगे और आज हम बात करेंगे नई उम्मीद और नया सवेरा इस मौजू के तहत कुछ फिल्मी नगमे गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत पेश किए जाएंगे। आखिर में पयाम शब के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम नए रंग अपने अख्तिताम को पहुंचेगा।

0: तो चलिए सामाइन, नायरंग प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सुनते हैं हरफे ताबिंदा। तहरीरो पेशकश है जनाब एम.ए. हाई साहब की।
1: सामईन इकराम, जिस तरह चेहरों की भीड़ में हर चेहरे की अपनी इनफरादियत होती है, हर आवाज़ की बाजीगर जुदा होती है, वैसे ही हर इंसान का मिजाज भी अपनी अलग पहचान रखता है। बाज़ लोग नर्म हवा की तरह मिलते हैं, गुफ्तगु करते हैं तो दिल की उलझने सुलझने लगती हैं, और कुछ लोग तेज़ आंधी की तरह होते हैं जिनकी मौजूदगी में सुकूत भी शोर बन जाता है। इंसान का असल रूप इसका मिजाज है, बाकी सब तो ज़ाहरी रूप होते हैं। मिजाज वो आईना है जिसमें इंसान का बातिन झलकता है। इंसान का बातिन अगर रोशन हो तो मिजाज में नरमी, वसत और कुशादगी आ जाती है, और अगर बातिन में तारीकी हो तो मिजाज में तलखी, तंगी और कड़वाहट आ जाती है। खुश मिजाज लोग मुसीबत में हों या राहत में, उनके लहजे में मिठास कभी कम नहीं होती, और कुछ लोग जो खुश मिजाज नहीं होते, खुशी भी उनके लिए बोझ बन जाती है। दरअसल खुशी, खुश मिजाजी एक नेमत होती है, और हुस्ने ख्याल ही हुस्ने मिजाज की पहली सीढ़ी है। जो इंसान ख्यालात को संवारता है वो मिजाज को संवारता है। मिजाज वो शय है जो खलवत में जन्म लेती है और जलवत में जाहिर होती है। दिल का मौसम जब नर्म हो तो ज़ुबान खुद ब खुद मुतवाजन हो जाती है। मिजाज दिल का अक्स है, यानि जब तक दिल में अमन ना हो तब तक ज़बान अमन की बात नहीं कर सकती। खुश मिजाजी सिर्फ खुश अखलाकी नहीं बल्कि एक रूहानी कैफियत है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान ने अपने नफ्स पर काबू पा लिया है। बदमिजाज शख्स हर चीज़ को शक की नज़र से देखता है, और खुश मिजाज हर चीज़ में खैर तलाश करता रहता है, और वह तनखीद में तरबियत ढूंढता है, वह तन्हाई में तजल्ली तलाश करता है। खुश मिजाजी अंधे एतमाद का नाम नहीं बल्कि वह इरफानी इदराक है, जिसकी रोशनी में इंसान हर शय को हिकमत के आईने में देखता है। खुश मिजाजी एक दुआ है जो अमल की सूरत में ज़ाहिर होती है। यह एक बरकत है जो दिल की सफाई से मिलती है। जब इंसान अपनी सोच को इबादत बना ले और अपनी नज़र को मोहब्बत बना ले, अपनी खामोशी को इल्म बना ले और अपने अमल को दुरुस्त कर ले, तो ऐसे इंसान नायाब होते हैं और हर किसी के दिलों को सुकून दे जाते हैं। बेहतर मिजाज बेहतरीन माशरे की तश्कील होते हैं।
0: हरफे ताबिंदा आपने समाप्त किया। तहरीरो पेशकश थी जनाब एम.ए. हाई की, और उन्वान था खुश मिजाजी। जी हाँ सामाइन, खुश मिजाजी दरअसल जिंदगी का वो रंग है जो हर रिश्ते, हर लम्हे और हर सफर को खुशगवार बना देता है। ये सिर्फ हंसने या मुस्कुराने का नाम नहीं बल्कि एक अंदरूनी रोशनी है जो दूसरों के दिलों को भी रोशन कर देती है। खुश मिजाजी दरअसल शुक्रगुजारी और सब्र की अमली शक्ल है। जो इंसान खुश मिजाज होता है वो न सिर्फ अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी सुकून और खुशी का ज़रिया बनता है। सामाइन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नायरंग, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz। आइए नायरंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं बिसाते गज़ल सिलसिले के तहत जनाब जामिन अली हसरत से उनका अपना कलाम।
2: गज़ल का मतलब समाप्त करें। मोहब्बतों की तो बातें हजार करता है, मोहब्बतों की तो बातें हजार करता है, मगर ये झूठ है वो हमसे प्यार करता है। मोहब्बतों की तो बातें हजार करता है, मगर ये झूठ है वो हमसे प्यार करता है। जो अपने जाल से हमको शिकार करता है, जो अपने जाल से हमको शिकार करता है, वो कौन शख्स है जो हम पे वार करता है। ना कोई नाव ना पतवार वो बादबां यारो, ना कोई नाव ना पतवार वो बाद

वहाँ यारो मेरी तरह कोई दरिया को पार करता है, मेरी तरह कोई दरिया को पार करता है। बुला के अपने खुर्ब उसका देख ले चेहरा, बुला के अपने खुर्ब उसका देख ले चेहरा, ये देख कौन तुझे संसार करता है, ये देख तुझे कौन संसार करता है। किसी खता से सबक सीखा नहीं है वो, किसी खता से सबक सीखा नहीं है वो, अगर खता को कोई बार बार करता है। किसी खता से सबक सीखा नहीं है वो, अगर खता को कोई बार बार करता है। वो इस तरह भी कभी दुश्मनी निभाता है, वो इस तरह भी कभी दुश्मनी निभाता है कि यार बन के मेरा मुझ पे वार करता है। मख्ता मुलाहजा करें, गुजर आए हैं हम दिन भर, गुजर आए हैं हम दिन भर इस तरह हसरत कि वो अदू है मगर जान निसार करता है। गुजर आए हैं हसरत हम इस तरह कि वो अदू है मगर जान निसार करता है। गज़ल का मतलब समझ करें, अपने हिस्से में दर्द आया है, अपने हिस्से में दर्द आया है, सब गंवा कर यही तो पाया है। अपने हिस्से में दर्द आया है, सब गंवा कर यही तो पाया है। साथ मिजगा ने नम को लाया है, साथ मिजगा ने नम को लाया है, जब कभी वो करीब आया है। हो मुबारक उसे नई दुनिया, हो मुबारक उसे नई दुनिया, जिसने दिल से मुझे भुलाया है। हो मुबारक उसे नई दुनिया, जिसने दिल से मुझे भुलाया है। मौसम गुल की बात मत कीजिए, मौसम गुल की बात मत कीजिए, मेरे दिल पे खिजां का साया है। मौसम गुल की बात मत कीजिए, मेरे दिल पे खिजां का साया है। रोगन खून डालकर ये चिराग, रोगन खून डालकर ये चिराग, रोशनी के लिए जलाया है। रोगन खून डालकर ये चिराग, रोशनी के लिए जलाया है। जुल्फ बिखरी है उनके रुख पर या, जुल्फ बिखरी है उनके रुख पर या, चांद पर आज अब्र आया है, चांद पर आज अब्र आया है। बख्ता मुलाहजा कीजिए, दुश्मनों से गिला नहीं हसरत, दुश्मनों से गिला नहीं हसरत, दोस्तों ने जब भी दिल दुखाया है, दोस्तों ने जब भी दिल दुखाया है। अपने हिस्से में दर्द आया है, सब गंवा कर तो यही पाया है। साथ मिजगा ने नम को लाया है, जब कभी वो मेरे करीब आया है। हो मुबारक उसे नई दुनिया, जिसने दिल मेरा दुखाया है। गज़ल का मतला समाप्त कीजिए, तेरे गम के सहारे पल रहा हूँ, तेरे गम के सहारे पल रहा हूँ, तपीश फुरखत की है और जल रहा हूँ, तपीश फुरखत की है और जल रहा हूँ, तेरे गम के सहारे पल रहा हूँ, तपीश फुरखत की है और जल रहा हूँ। चला हूँ आरज़ुएं मंजिल की लेकर, चला हूँ आरज़ुएं मंजिल की लेकर, सदा कांटों पे लेकिन चल रहा हूँ, सदा कांटों पे लेकिन चल रहा हूँ। नहीं पाया सुकून तूने भी जालिम, नहीं पाया सुकून तूने भी जालिम, तेरी आँखों से मैं ही ढल रहा हूँ। नहीं पाया सुकून तूने भी जालिम, तेरी आँखों से मैं ही ढल रहा हूँ। मुझे गम के तो खुश रहने दे, वहीं मैं हूँ जो तेरा कल रहा हूँ, वहीं मैं हूँ जो तेरा कल रहा हूँ। तेरी आँखों में अंगारे ये कैसे, तेरी आँखों में ये अंगारे कैसे, तेरी आँखों का मैं काजल रहा हूँ, तेरी आँखों का मैं काजल रहा हूँ। मुझे क्यों मसलों में तूने छोड़ा है, मुझे क्यों मसलों में तूने छोड़ा, तेरे हर मसले का हल रहा हूँ, तेरे हर मसले का हल रहा हूँ। मख्ता समात करें, ये किस जुर्म में हसरत को तन्हा, ये किस जुर्म में हसरत को तन्हा, तेरा मैं मुंतजर पल पल रहा हूँ, तेरे गम के सहारे पल रहा हूँ, तफीशे फुरखत की है और मैं जल रहा हूँ। चला हूँ आरज़ुएं मंजिल की लेकर, सदा कांटों पे लेकिन चल रहा हूँ। गज़ल का मतलब समाप्त करें, डूब कर जिनको उभरना आ गया, डूब कर जिनको उभरना आ गया, उनको जीना और मरना आ गया, डूब कर जिनको उभरना आ गया, उनको जीना और मरना आ गया। इश्क की कस्में जो खाते थे सदा,
इश्क की कस्में जो खाते थे सदा।

0: लोग के मैं हंस रहा हूं झूठ है, जो कह रहे हैं लोग के मैं हंस रहा हूं झूठ है, अलम है और रंज है मलाल मेरे साथ है, अलम है और रंज है मलाल मेरे साथ है। खुले हैं फूल हर कदम पे मेरे रास्ते में अब, खिले हैं फूल हर कदम पे मेरे रास्ते में अब, तेरी निगाह नाज का ख्याल मेरे साथ है। बिछा दो कांटे राह में हजार कर लो तुम सितम, बिछा दो कांटे राह में हजार कर लो तुम सितम, रहे ख्याल रबुल जलाल मेरे साथ है, रहे ख्याल रबुल जलाल मेरे साथ है। मख्ता मुलाहजा करें, तुम्हारी बज़्म में चलेगा मेरा तस्किरा सदा, तुम्हारी बज़्म में चलेगा मेरा तस्किरा सदा, सुखनवरी का ऐसा कुछ कमाल मेरे साथ है, बस एक तेरे बिछड़ने का ख्याल मेरे साथ है, हैं आंखें अब भी नम मलाल मेरे साथ है, पड़ूंगा भारी दुश्मनों पे मैं हमेशा याद रखना, है साथ मेरे जलाल मेरे साथ है। मुझे डसा है दोस्तों ने नाग बन के किस लिए, हर एक लम्हा बस यही सवाल मेरे साथ है। गज़ल का मतला समाप्त करें, सामने से मेरे गुजरे हैं कदावर कितने, मुझसे मिलने भी चले आए हैं अक्सर कितने, सामने से मेरे गुजरे हैं कदावर कितने, मुझसे मिलने भी चले आए हैं अक्सर कितने, आजमाइश है ये कुदरत की खुदा खैर करे, हो के अब रह गए आसाम में बेघर कितने, आजमाइश है ये कुदरत की खुदा खैर करे, हो के अब रह गए आसाम में बेघर कितने। बैल दरिया की मिसाल आज भी कब मिलती है, बैल दरिया की मिसाल आज भी कब मिलती है, एक दरिया को तरसते हैं समंदर कितने, ये अलग बात है कांटों ने संभाला होगा, ये अलग बात है कांटों ने संभाला होगा, फूल के सीने पे तोड़े गए पत्थर कितने, ये अलग बात है कांटों ने संभाला होगा, फूल के सीने पे तोड़े गए पत्थर कितने, उनकी आँखों का नशा ऐसा गज़ब का है नशा, उनकी आँखों का नशा ऐसा गज़ब का है नशा, छूट जाते हैं हर एक हाथ से सागर कितने। वक्त की मार ने हालात बदल डाले हैं, वक्त की मार ने हालात बदल डाले हैं, दरबदर आज जो हैं कल थे तवंगर कितने, दरबदर आज जो हैं कल थे तवंगर कितने, जलते इंसान मकान जलते हुए आग ही आग, जलते इंसान मकान जलते हुए आग ही आग, क़ैद आँखों में मेरी हो गए मंजर कितने, क़ैद आँखों में मेरी हो गए मंजर कितने, नफ़रत व बुग़्ज़ व अदावत की रियाकारी, नफ़रत व बुग़्ज़ व अदावत की रियाकारी, ज़िंदगी तेरे बयाबां में है लश्कर कितने, नफ़्स व बुग़्ज़ व अदावत की रियाकारी, ज़िंदगी तेरे बयाबां में है लश्कर कितने। मख्ता मुलाहज़ा करें, एक गुनाहगार की मानिन खड़े हैं हसरत, एक गुनहगार की मानिन खड़े हैं हसरत, रह गए हम भी ज़माने में बिखर कर कितने, एक गुनहगार की मानिन खड़े हैं हसरत, रह गए हम भी ज़माने में बिखर कर कितने।
1: बिसात गज़ल, इस सिलसिले के तहत जनाब जामिन अली हसरत से उनका अपना कलाम आपने समाप्त किया। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नया रंग और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
2: FM Rainbow 101.9।
1: प्रोग्राम नैरंग में हम अब उस पड़ाव पर आ गए हैं सामाइन, जहां पेश होता है आपका और हमारा पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है गीत सुरीले गाता जा। कहते हैं कि अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, सूरज की एक किरण पूरे उफक को रोशन करने के लिए काफ़ी होती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, जहां कोई रास्ता ख़त्म होता है वहीं से एक नया मोड़, एक नया सफ़र और एक नई उम्मीद जन्म लेती है। इसीलिए आज के इस ख़ास गीत सुरीले गाता जा में हमारा मौजू है नई उम्मीद नया सवेरा। तो बस माजी के तमाम गमों और तलखियों को पीछे छोड़ दीजिए,

प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा का बाकायदा आगाज करते हैं एक ऐसे सहरंगेज नगमे के साथ जो दिल में जीने की एक नई तरंग और आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है। आइए सुनते हैं ये नगमा।

रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, इस तरह के बोल हमें जीने की राह सिखाते हैं, नई उम्मीद देते हैं और ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, आगे बढ़ने की, हमें कोशिश करने की, हमें यही तरगीब देते हैं। बहुत ही खूबसूरत नगमा आपने समाप्त किया, इम्तिहान फिल्म से लिया गया और इस गीत को गाया था किशोर कुमार ने। नई उम्मीद ये भी हमें देती है सामाइन के बुरा वक्त गुज़र जाता है, अच्छा वक्त ज़रूर आता है। इसी उम्मीद के साथ इंसान को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर बुरा पल कभी बाकी नहीं रहता, वो गुज़र जाता है और उस बुरे वक्त को डटकर, उस बुरे वक्त के साथ डटकर मुकाबला करने वाला ही सच्चा इंसान और हिम्मत वाला इंसान कहलाता है। तो

किशोर कुमार को आपने सुना, गोलमाल फिल्म से लिया गया गीत ये था। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और नए रंग प्रोग्राम

0: प्रोग्राम में गीत सुरीले गाता जा सिलसिले के तहत फिल्मी नगमे पेश किए जा रहे हैं नई उम्मीद नया सवेरा इस मौजू पर। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: FM Rainbow 101.9

गीत सुरीले गाता जा, ये सिलसिला जारी है नई उम्मीद और नए सवेरे के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि जो गुजरा हुआ कल था वो महज एक ख्वाब था, और जो आने वाला कल है वो एक उम्मीद। असल जिंदगी तो सिर्फ आज में है, माजी की तलखियों, नाकामियों और पुराने गलियों के गमों को दिल से लगाए रखने से इंसान अपना आज भी ज़ाया कर देता है। इसीलिए अकलमंदी यही है कि माजी का सफ़ा पलट दिया जाए और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। इसी जज्बे आज़ादी और नए शुरुआत को सलाम पेश करने के लिए आज के गीत सुरीले गाता जा में हम पेश कर रहे हैं नई उम्मीद और नए सवेरे से ताल्लुक़ रखने वाले नगमे। इसी तारीख़ और लाजवाल नगमे के साथ जो हमें बताता है कि पुरानी बातों को छोड़कर नए दौर के साथ कदम मिलाना ही तरक्की और ख़ुशी की चाबी है। आइए कुछ ऐसे ही बोल लेकर पेश होने जा रहा है अगला नगमा, सुनते हैं। यह है वो नगमा।

फिल्म हम हिंदुस्तानी से लिया गया नकमा आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और नए रंग प्रोग्राम में पेश हो रहा है गीत सुरीले गाता जा। और आज का हमारा मौजू है नई उम्मीद नया सवेरा। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी किसी एक जगह ठहरने का नाम नहीं, बल्कि ये तो एक मुसलसल बहता हुआ दरिया है, एक ऐसा रास्ता है जहाँ हर मोड़ पर नए चैलेंजेस, नए चेहरे और नए सबक हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं। मंजिल अहम ज़रूर है, लेकिन असल खूबसूरती और मज़ा उस सफ़र को जी भर के जीने में है। ज़िंदगी के इस रास्ते में कभी धूप होती है तो कभी छांव, कभी सीधी सड़क तो कभी दुश्वार गुजार मोड़, लेकिन असल बात यह है कि इंसान हर हाल में आगे बढ़ता रहे।

0: फिल्म काला पत्थर से लिया गया नगमा आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और नए रंग में गीत सुरीले गाता जा का सफर जारी है। सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: FM Rainbow 101.9

गीत सुरीले गाता जा सिलसिले में नई उम्मीद नया सवेरा, इस मौजू पर नगमे पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में जब कोई बच्चा आँख खोलता है तो रोते हुए ही इस दुनिया में कदम रखता है, लेकिन ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि इंसान अपने अखलाक, अपनी मुस्कुराहट और अपनी नेकियों से इस दुनिया को ऐसा खूबसूरत बना जाए कि जब रुखसत का वक्त आए तो वो खुद इत्मीनान से मुस्कुराए और दुनिया उसकी याद में रश करे। ज़िंदगी लंबी हो या छोटी, अहम ये है कि वो कितनी भरपूर जी गई है। इसी फलसफे को सलाम करते हुए आइए सुनते हैं अगला नगमा, जो हमें बताता है कि हर हाल में मुस्कुरा कर जीना ही असल सिकंदरी है। आइए सुनते हैं ये गीत।

मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का नगमा आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। दोस्तों, दुनिया में कोई भी कामयाबी बग़ैर जिद्दोजहद और बग़ैर नाकामी का स्वाद चखे हासिल नहीं होती। नाकामी या हार कोई इख्तिताम नहीं, बल्कि वो तो कामयाबी का पहला कदम है, जो गिरकर संभलना जानता है और हार के बाद डटकर खड़ा होता है। फतेह आखिरकार उसी के कदम चूमती है। अगर रात गहरी ना हो तो सुबह की रोशनी की कीमत महसूस नहीं होती, और अगर इंसान हार का सामना ना करे तो जीत का असल मज़ा नहीं आता।

0: कहते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर, नेकी कर दरिया में डाल। सामाइन इसी जज्बे को हम बता रहे हैं गीत सुरीले गाता जा मैं, क्योंकि नई उम्मीद और नया सवेरा आज का मौजू है। इसी मौजू के तहत नगमे पेश किए जा रहे हैं, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz।
1: FM Rainbow 101.9

नारंग प्रोग्राम पेश हो रहा है और आज के नारंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाता जा का मौजू है नई उम्मीद नया सवेरा। नई उम्मीद दरअसल ज़िंदगी का वो चिराग है जो हर अंधेरे में रोशनी फैलाता है, अगर हम ये अज़्म कर लें कि हर मैदान में कामयाबियां तलाश करनी हैं तो नाकामी भी हमें मज़ीद मज़बूत बनाने का ज़रिया बन जाती है। ये इंसान को मुश्किलात में भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। हर नाकामी को सबक और हर कामयाबी को मंजिल का जीना बना देती है। नई उम्मीद के साथ इंसान हर दिन को एक नया आगाज़ समझता है। नई उम्मीद दरअसल यकीन और सब्र का दूसरा नाम है। जो शख्स हर मैदान में कामयाबी तलाश करता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके दिल में हमेशा एक नया सवेरा मौजूद होता है।

संजू फिल्म से लिया गया नगमा आपने सुना। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग, और नए रंग में हर शब आप सुन सकते हैं गीत सुरीले गाता जा, एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम जिसमें

0: एक मखसूस मौजू पर गीत पेश किए जाते हैं। तो सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर, यानी आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर।
1: FM Rainbow 101.9

गीत सुरीले गाता जा। मौजू है आज का नई उम्मीद नया सवेरा। कहते हैं कि इंसान खुराक और पानी के बगैर तो कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन उम्मीद के बगैर एक पल भी जीना मुश्किल हो जाता है। उम्मीद और आशाएं ही वो चिराग हैं जो जिंदगी के तारीख तरीन रास्तों को भी रोशन कर देते हैं। यही वो जज्बा हैं जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने, एक नया कदम बढ़ाने और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद मुस्कुराकर जीने की तरगीब देता है। उम्मीद और आशाएं दरअसल इंसान के अंदरूनी ईमान की अलामत हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है और हर अंधेरे के बाद सवेरा।

0: आशाएं, ये थे गीत के बोल। और इस गीत को गाया था के और इरफान सिद्दीकी ने। सामाइन, नए रंग प्रोग्राम में गीत सुरीले गाता जा। आज के इस गीत सुरीले गाता जा में उम्मीदें, आशाएं, नई उम्मीद, नया सवेरा, इस पर बात हो रही है। सुनते रहिए हमारा ये प्रोग्राम जो कि पेश होता है नैरंग प्रोग्राम में। और आप इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं आकाशवाणी हैदराबाद FM 101.9 MHz पर। और ये प्रोग्राम पेश होता है 9:30 पर, रात 9:30 पर। ट्यून कीजिएगा आकाशवाणी हैदराबाद, सुनते रहिए।
1: FM Rainbow 101.9.

नई उम्मीद नया सवेरा इस मौजू के तहत गीत सुरीले गाता जा के गीत आप सुन रहे हैं। उम्मीद इंसान को वो पर अता करती है जो हकीकत से आगे बढ़कर ख्वाबों की दुनिया में ले जाती हैं। उम्मीद इंसान को नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हौसला देती है। ये दिल को आसमान की वसवतों तक ले जाती है जहां ख्वाब हकीकत का रूप धारते हैं। बादल पर पांव रखने का मतलब है कि इंसान अपनी सोच और यकीन से जमीन की हदों को तोड़कर आसमान को छू ले। उम्मीद दरअसल वो कुव्वत है जो इंसान को जमीन की महदूदियत से निकालकर आसमान की लामहदूदियत में ले जाती है। ये हमें याद दिलाती है कि ख्वाब देखना ही जीने की असल तरकीब है और ख्वाबों को हकीकत बनाना ही कामयाबी है। तभी एक नया सवेरा होता है।

जीने की नई उम्मीद और नए सवेरे पर हम बात कर रहे हैं सामाइन। नई उम्मीद हमें रेलगाड़ी से भी मिलती है। रेलगाड़ी वाकई इंसान को जीने की नई उम्मीद देती है। जैसे गाड़ी पटरी पर आगे बढ़ती है, वैसे ही जिंदगी भी मुश्किलात के बावजूद अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा रहती है। हर स्टेशन एक नया आगाज़ है, जैसे ज़िंदगी के हर दिन में नई उम्मीद छुपी होती है। गाड़ी का सफ़र हमें याद दिलाता है कि रुकने के बाद भी दोबारा चलना मुमकिन है। मंजिल चाहे दूर हो, मगर सफ़र जारी रखने से आखिरकार पहुंच ही जाते हैं। रेलगाड़ी हमें ये सबक देती है कि ज़िंदगी का सफ़र रुक सकता है, सुस्त हो सकता है, मगर ख़त्म नहीं होता। उम्मीद वो क़ुव्वत है जो हमें हर मंजिल तक ले जाती है, चाहे रास्ता कितना ही तवील क्यों ना हो।

चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। समय न वक्त इतनी तेजी से गुजर गया कि पता ही नहीं चला। और अब गीत सुरीले गाता जा का ये सफर, तरन्नुम से भरा ये सफर अपने अख्तिताम की तरफ बढ़ चुका है। जाते जाते अब सबसे आप सबसे बस इतनी ही इल्तजा करेंगे कि कभी किसी आर्जी हार से दिल छोटा ना कीजिए, अपनी कोशिश जारी रखिए, क्योंकि हार के बाद ही असल जीत आपकी मुंतजिर होती है। सामाइन, गीत सुरीले गाता जा अब यहीं पर ख़त्म हुआ। प्रोग्राम नरंग के आखिर में आइए सुनते हैं पयाम-ए-शब।

मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। इंसान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार खुद एहतसाबी और अपनी गलतियों पर गौर फिक्र करना चाहिए। आज का पैगाम ये है कि इंसान को अपने फैसलों और आमाल का जायजा लेते रहना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए या नुकसान पहुंच जाए तो उसका एहसास होना और उससे सबक हासिल करना जरूरी है। अपनी कोताहियों को मामूली समझना या उन पर नदामत महसूस न करना इंसान को मजीद नुकसान की तरफ ले जा सकता है। अपनी गलतियों को पहचानो, उनसे सबक सीखो और अपनी इसलाह की कोशिश करो। दानिशमंद वो नहीं जो कभी गलती ना करे, बल्कि वो है जो गलती के बाद खुद को संभाल ले। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी उसकी अपनी बेएहतियाती, जिद या गफलत होती है। अपने आप की कदर करो, क्योंकि जो शख्स खुद को संभाल लेता है वो जिंदगी के बड़े से बड़े नुकसान की तिलाफी कर सकता है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में 26वें वार्षिक शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यह दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।
1: कुछ दिनों बाद भारत ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी भारतवासी भारत में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। आपकी यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों को भी बल मिलेगा और ब्रिक्स के अंतर्गत संवाद और सहयोग भी सशक्त होगा।
0: राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिश्केन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री ने बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने भारत के रुख को दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जाफरोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ के बाद बचाव अभियान में लगे सुरक्षा कर्मियों को आधुनिक उपकरणों और हेलीकॉप्टरों की कमी के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई इस बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने आज सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। ताशकंद के दस्तलिक स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिंगामियुम शमी ने 86वें मिनट में भारत के लिए मैच का एकमात्र गोल किया। भारतीय टीम का अगला मुकाबला बृहस्पतिवार को मेजबान उज्बेकिस्तान से होगा। दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने आज अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए रिकॉर्ड 207 मैच खेले। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु।

0: बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: Rose Subha Service, stock or company specific queries. And the numbers on which you can call us are 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, please add a prefix of 011 as a code to these numbers. I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
2: धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आज भी हम अर्थव्यवस्था और व्यापार जगत से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास कंपनी या शेयर से जुड़े सवालों के जवाब नहीं दे पाएंगे। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। श्रोता, इससे पहले STD कोड 011 भी डायल करें। आज की खबरों पर चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड, हमारे साथ हैं आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद सुबोध जी।
2: पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा अनेजा डैंग।
1: हां जी, थैंक यू सुबोध। यस फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस राइट अवे। वेल, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 300 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,100। इंडियाज रियल GDP ग्रोज बाय 7.8% इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में गिरावट, सेंसेक्स 300 अंकों से ज्यादा गिरा, निफ्टी 24,100 से नीचे पहुंचा। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 7.8% बढ़ा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल।

0: Well, before we move ahead with more financial news, friends, here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: जी लालिमा, अब खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले चलते हैं एक कॉलर के पास जो जुड़ गए हैं.
0: जी जी,
1: दिल्ली से सतीश हमारे साथ है. स्वागत है सतीश आपका, सवाल पूछे.
0: जी सतीश, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज.
2: यस, माय क्वेश्चन इज मैम कि गोल्ड और सिल्वर का अभी आउटलुक कैसा रहेगा आने वाले दिनों में?
3: सतीश जी, गोल्ड में अगर आप देखें पिछले पिछले कुछ महीनों से थोड़ा सा करेक्शन आया था, उस वक्त बाइंग अपॉर्चुनिटी बनी थी लोगों के लिए, लेकिन अब चूंकि जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें कि क्राइसिस फिर जो है थोड़ा सा इंटेंस हो रहा है और उसको लेके कंसर्न्स हैं, हो सकता है कि प्राइसेस जो हैं प्रेशियस मेटल्स के अभी और बढ़ें. तो आप जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखें. अगर आपके पास नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा एक हिस्सा जो है प्रेशियस मेटल्स का रख सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है दोनों प्रेशियस मेटल्स की वो काफी अच्छी है.
0: एंड गोल्ड एंड सिल्वर लव जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी.
3: एब्सोल्युटली.
1: चलिए राइट जी, खबरों का सिलसिला शुरू करें. हम पहले देखते हैं कि शेयर बाजार में क्या रहा. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज 0.4% की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 307 अंक गिरकर 76,957 पर बंद हुआ. निफ्टी 95 अंक नीचे 24,080 पर आ गया. एनएसई के अन्य सूचकांकों में मिला जुला रुख रहा. मिड कैप 100 सूचकांक 0.2% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 0.1

0: 7% नीचे आ गया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आज कारोबार की शुरुआत से ही सूचकांकों में कमजोरी रही। पूरे सत्र में अधिकांश सेक्टर्स पर बिकवाली का दबाव बना रहा।
1: Benchmark domestic equity indices ended 0.4% down today. The Sensex declined 307 points to close at 76,957. The Nifty dropped 95 points to settle at 24,080. Meanwhile, the broader market at the National Stock Exchange displayed a mixed trend. The Mid-Cap 100 Index gained 0.2%, while the Small-Cap 100 Index dipped 0.7%. Earlier, the markets opened on a weak note as escalating geopolitical tensions in West Asia and rising crude oil prices weighed on investor sentiment. Both the indices witnessed selling pressure across most sectors throughout the session.
0: और देखते हैं कि सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का शेयर आज कैसे परफॉर्म किया। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे। सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों पर नज़र डालें। अडानी पोर्ट्स में 4.1%, आईटीसी में लगभग 3.7% और भारती एयरटेल में लगभग 2.8% की गिरावट देखी गई। इसके उलट सन फार्मा में 1.9%, आईसीआईसीआई बैंक में 1.7% और एक्सिस बैंक में 1.5% की बढ़त दर्ज की गई।
1: Let's take a look at the sectoral indices now. And on the BSE, 21 out of 28 sectors edged downward. Among the top laggards, utilities decreased 2.6%, metal lost 2.4%, services dipped 1.9%. In contrast, mid-small private banks' quality tilt rose over 1.2%. Mid-small private banks gained 1.2%, and Bankex added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,572 companies declined, 1,858 advanced, and 250 remained unchanged.
0: अगले कॉलर के पास जाने से पहले बता दे रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया आज 22 पैसे बढ़कर 95.17 रुपए पर बंद हुआ।
1: एंड नाउ लेट्स कनेक्ट टू बिहार वेयर टिंकू राय इज ऑन द लाइन। जी टिंकू जी, सवाल पूछिए अपना। जी
2: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
3: नमस्ते टिंकू जी।
2: मेरा मैम यही दो सवाल है। एक जो पीपीएस अकाउंट जो खुलता है वरिष्ठ नागरिक के लिए, वो जैसे बैंक और पोस्ट ऑफिस में क्या अंतर है, ब्याज इंटरेस्ट या अंतर है? और एक ये है जो एटीएम कार्ड हम किसी बैंक से लेते हैं, क्या इसके साथ इंश्योरेंस मिलता है या ऐसी अफवाह है? कोई बताता है 2 लाख का इंश्योरेंस इसका फ्री रहता है इस पर? यही मेरा दो सवाल का जवाब चाहिए।
3: टिंकू जी, आपने जो सवाल किया है, आपको सीनियर सिटीजन्स के लिए अगर आप देखेंगे तो बैंक्स जो हैं वो भी आपको अच्छा इंटरेस्ट रेट देते हैं, एडिशनल इंटरेस्ट रेट देते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए। पीपीएफ में थोड़ी सी बंदिश रहती है, वो लॉक्ड इन रहता है, थोड़े बेटर रिटर्न्स भी आपको मिलते हैं वहाँ पर, फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं जो सरकार नोटिफाई करती है, सरकार की तरफ से वो ब्याज दरें तय होती हैं।
1: टैक्स नहीं लगता उस पे।
3: और टैक्स भी नहीं लगता है।
1: That's the most important thing.
3: दूसरा चीज है कि बैंक्स में फिक्स डिपॉजिट तो रहता ही है, लेकिन अगर आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं है तो नॉर्मल सीनियर सिटीजन्स में रेट में फ्लक्चुएशन जिस तरह से होता है वो उतार चढ़ाव का गुंजाइश रहता है।
1: All right, and now he asked another question.
3: इंश्योरेंस की बात आपने कही थी। इंश्योरेंस के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, सीनियर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इंश्योरेंस का है।
0: एटीएम कार्ड के साथ इन्होंने पूछा है कि एटीएम कार्ड के साथ इंश्योरेंस है या नहीं।
3: एटीएम कार्ड के साथ
0: एक्चुअली वो बैंक अकाउंट के साथ आपको एक छोटा सा इंश्योरेंस जो बैंक्स ऑफर करते हैं आजकल हर अकाउंट के साथ,
3: ज्यादातर बैंक्स करने लगे हैं वो, लेकिन ऐसा कोई योजना नहीं है कि जो एटीएम कार्ड के साथ आपको सरकार की तरफ से कोई इंश्योरेंस दिया जा रहा है
0: जी। चलिए अगली खबर, आज की बड़ी खबर

0: जीडीपी भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में ये वृद्धि दर 6.9% रही थी। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की रफ्तार बरकरार है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नॉमिनल जीडीपी में भी 10.3% की बढ़ोतरी हुई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने आज चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से जून तक के जीडीपी के तिमाही अनुमान जारी किए। अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को तृतीय क्षेत्र ने प्रमुख रूप से मजबूती प्रदान की है। इस क्षेत्र में 10% की वृद्धि देखी गई। इसमें मुख्य योगदान वित्त, रियल एस्टेट, आईटी और प्रोफेशनल सेवाओं का रहा, जिनमें 12.1% की वृद्धि दर्ज की गई। द्वितीय क्षेत्र में 8.6% की वृद्धि हुई। प्राथमिक क्षेत्र में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। इसमें मुख्य योगदान कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का रहा, जिनमें चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6% की बढ़ोतरी देखी गई।
1: So, how would you? All right, I think we go ahead and see the Prime Minister's reaction. Well, the Prime Minister has termed India's exemplary GDP growth of 7.8% in the first quarter of financial year 2026-27 a Herculean feat. In a social media post, the Prime Minister said that the achievement reflects the collective strength and resilience of the people of the country, despite oil price shocks, supply chain disruptions, and global uncertainties. And before we go any further, we have Nitin online calling us from Delhi. Yes, Nitin ji, yeah, सवाल पूछिएगा अपना जी.
2: धन्यवाद जी.
1: जी
2: मैडम, मेरा ये पूछना है कि मैं सीनियर सिटीजन हूँ और मेरे अभी 1 महीने बाद मेरी मेच्योरिटी हो जाएगी, अभी मेरी मेच्योर हो जाएगी, तो लगभग अच्छी खासी है, 30-35 लाख की है. तो इसमें ये मुझे
1: ये तो
2: बताइए
1: बहुत
2: कि
1: बढ़िया.
2: हमें मार्केट में पैसा लगाने की कोई जानकारी नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या और से बेस्ट एफडी से क्या मिल सकता है, या शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड, कहाँ हम इस चीज के लिए सोचे हैं? क्योंकि तो बच्चों के लिए, अगर बच्चे करते हैं तो इसके लिए तो वो कर सकते हैं.
0: तो आप कितने समय के लिए पैसा लगाना चाहते हैं?
2: लगभग जैसे हम हर साल एक एक साल की एफडी होती है, 2 साल की भी होती है, तो अभी 1 साल की मेरी मेच्योर हो जाएगी और 2 साल की मेरी अगले साल मेच्योर होगी कुछ एफडियां, तो हम उसमें जाते हैं और सीधा हो जाता है, इसमें कोई सिद्धि नहीं हमें महसूस होती. शेयर मार्केट के लिए थोड़ा ज्ञान ज्यादा होना चाहिए, मार्केट की उतार चढ़ाव और क्या कैसा उसका तरीका
3: जी,
2: है, कैसा
3: एकदम आपने सही कहा. शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए थोड़ी जानकारी चाहिए और इसीलिए मार्केट मंत्रा में आपको हम जानकारी देते हैं. आपकी एफडी जो है, एक तो आप कम अवधि के लिए उसको बैंक के साथ रखते हैं नितिन जी, जब तक आपको ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे लंबी अवधि तक रखेंगे तो आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलेगा, आपको उसमें ब्याज भी बेहतर मिलेगा. अगर आप बाजार की तरफ आप उसमें कुछ अमाउंट आप निवेश करना चाहते हैं, तो जो थोड़े सेक्टर्स हैं, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले सेक्टर्स हैं, जहां पर आपको लगता है, और जो कंपनीज जो जहां पे बहुत मजबूत हैं, जो टॉप कंपनीज हैं, आप उस हिसाब से उनमें आप निवेश कर सकते हैं. लेकिन आप वो देखिएगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए करते हैं तो आपको बेहतर उसमें रिटर्न्स मिल पाएंगे.
1: Yeah, considering the fact he's a senior citizen, so risk appetite should be low,
3: low,
1: and
3: exactly. I mean,
1: short term investment is
3: you have
1: good.
3: money in hand,
1: yes.
0: और
3: you
0: उन्हें
3: know,
0: एफडी पर रेट भी ज्यादा मिलता है.
3: exactly,
0: जी
3: you know.
0: जी दीपशिखा, आज की आप बड़ी खबर पे लौटते हैं. हम जीडीपी के आंकड़े हैं जो
3: जी
0: बहुत उत्साहजनक दिखाई दे रहे हैं.
3: बहुत ही बेहतर आंकड़े जो
0: जी,
3: हैं वो आए हैं,
0: और
3: क्योंकि
0: खासकर जब दुनिया ऐसी चुनौतियों से गुजर रही
3: बिल्कुल
0: थी,
3: हमने देखा
0: उस
3: कि
0: बीच हमारे
3: पूरा
0: देश का
3: पूरा
0: प्रदर्शन
3: जो
0: है.
3: है 2-2.5 महीना जो एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय था ये, तो उस दौर में, और अगर आप आंकड़े भी देखें जीडीपी के, तो निवेश में बढ़ोतरी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही कहना चाहिए सेक्युलर ग्रोथ है. अगर आप देखते हैं कृषि क्षेत्र में भी जो एवरेज ग्रोथ चल रही है उसी हिसाब से है, तो आंकड़े जो हैं बहुत ही

0: तो चलता रहेगा। अभी चले अगले कॉलर के पास। दिल्ली से सतपाल सिंह हमारे साथ हैं। सतपाल जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार
2: नमस्कार सतपाल जी।
1: हाँ जी
2: जी, सवाल पूछिए।
1: मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जो अमेरिका और ईरान का जो ये चल रहा है, जो पॉलिटिकल इशू बना हुआ है काफी टाइम से, 6 महीने हो गए हैं, तो ये बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर भी आगे चल सकता है इस सिचुएशन में? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोल्ड के प्राइस कैसे रहने वाले हैं अगले 6 महीने में?
2: सतपाल जी, देखिए, जो जियोपॉलिटिकल संकट है वो तो हमने आज भी देखा, वो ख़त्म नहीं हो रहा है वेस्ट एशिया में। वहाँ पर समाधान जो है, एक कहना चाहिए जैसे ड्यूरेबल पीस जो है, वो नहीं आ पा रही, और उसकी वजह से बाज़ार में बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन आपने कहा कुछ एक क्षेत्र, अगर हम देखें आज के हमारे GDP के आंकड़े आए हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है इकॉनमी का, उस हिसाब से अगर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत स्थिति में है। आगे जाने वाले जो कुछ क्षेत्र हैं, आप क्योंकि अर्थव्यवस्था बेहतर कर रही है तो क्रेडिट का डिमांड रहेगा, फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र आप देख सकते हैं। सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी खर्चा कर रही है, तो कैपिटल गुड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं वो देख सकते हैं। डिफेंस क्षेत्र में काफ़ी जो है वो काम हो रहा है, डिफेंस में आप देख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स देख सकते हैं। तो ये कुछ एक सेक्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म में उम्मीद की जाती है कि ये आपको बेहतर रिटर्न्स देंगे। आपने कहा गोल्ड जो है, चूँकि जियोपॉलिटिकल अस्थिरता हम देख रहे हैं कि किस हिसाब से चल रही है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में एक गोल्ड एक लॉन्ग टर्म एसेट की तरह आप उसको देखिए, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो।
3: राइट, वी कनेक्ट टू भोपाल नाउ एंड शंकर जी हैज जॉइंड अस। यस शंकर जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। या
4: नमस्ते मार्केट मंत्रा टीम। माय क्वेश्चन इज अबाउट निफ्टी व्हिच हैज बीन होवरिंग एट 24,000 for last 3 years consecutively, 24, 25 and now 26.
3: Mm-hmm.
4: The yes. major reason could be FII is pulling out, and FII has pulled out because they fear that dollar will rise and they have to withdraw in dollar, and dollar will rise because

0: take this decision. They will at some juncture. I'm sure the policymakers are examining it.
1: जी, अगले कॉलर है कोलकाता से अतनु साहा, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
2: हाँ, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्र सर। माय क्वेश्चन इज मैम, दिस इज हेजिंग अगेंस्ट मार्केट वोलेटिलिटी अदर देन गोल्ड, व्हाट वुड बी मैम? थैंक यू।
1: और क्या हो सकता है?
0: और क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप जो है अगर मार्केट के हिसाब से हेज करना चाहें तो आपको कम रिटर्न्स पे बैंक्स देखने पड़ेंगे, एफडीज देखने पड़ेंगे। यू एक्चुअली हैव टू लुक एट अ मोर बैलेंस पोर्टफोलियो इन विच यू हैव यू नो ऑल काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट एज मिक्स, विच विल गिव यू सम हेज अगेंस्ट वेरी शार्प फ्लक्चुएशंस और वेरी शार्प फॉल इन मार्केट्स।
3: All right, let's go ahead with some more news. 18 of the 19 subsectors under the Index of Services Production, that's ISP, recorded year-on-year expansion in June 2026, with 8 posting double-digit growth. According to the subsectoral trial, ISP data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI, today, real estate led the pack with growth of 24.7%, followed by retail trade at 18%. Wholesale trade grew by 15.1%, administrative and support services rose 14.4%, and IT and computer related services increased 13.5%. Meanwhile, air transport was the only subsector to contract, falling 6% from a year earlier. Moving ahead, the government today notified the Semicon 2.0 scheme with an outlay of 1.27 lakh crore rupees to boost the chip manufacturing ecosystem in the country. With this, India could account for nearly 10% of the global semiconductor industry market in the coming years and is expected to play a much bigger role in the global semiconductor value chain. Union Minister for Electronics and Information Technology, Ashwini Vaishnav, said this while addressing the media in New Delhi today. After releasing the notifications for all the six pillars of the Semicon India Programme 2.0, Mr. Vaishnav noted that there is confidence among global semiconductor industry stakeholders that India is the right destination for major investments in the coming decades.
1: Yes, there is some pratikriya. India Electronics and Semiconductor Association ने आज Semicon 2.0 की आधिकारिक अधिसूचना का स्वागत किया। ये कार्यक्रम Semicon India प्रोग्राम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए भारत की सेमीकंडक्टर क्षमताओं को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि Semicon 2.0 का व्यापक दृष्टिकोण भारत की सेमी कंडक्टर क्षमता को काफ़ी मजबूत कर सकता है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित करने, उच्च मूल्य वाले रोजगार के अवसर पैदा करने और वैश्विक स्तर पर एक भरोसेमंद सेमीकंडक्टर भागीदार के रूप में भारत की स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। और लालिमा, एक खबर जो अभी हमने आपने पढ़ी थी आईएसपी की, उस पर शायद हमें कुछ और गौर करने की जरूरत है। दीपशिखा, क्या कहना आपका?
0: देखिए, हम जीडीपी की चर्चा कर रहे थे। सर्विस क्षेत्र जो है काफी रोबस्ट स्थिति में है, उसका परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट रहा है, बेहतर कर रहा है। ये इंडेक्स जो है अभी थोड़ा नया इंडेक्स है, इसका ट्रायल पीरियड ही चल रहा है,
1: जी, जी, जी।
0: तो उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, बट हाँ, काफी हद तक कैप्चर करता है ये सर्विस क्षेत्र का परफॉर्मेंस।
1: अच्छे संकेत
0: तो है। अच्छे संकेत हैं।
3: All right, now we are joined by Amit Jha from Delhi. जी अमित जी, सवाल पूछिए। जी
4: नमस्कार लालिमा मैम, आपका नमस्कार मैम।
3: नमस्कार जी, जी।
4: आप रेनबो पे आते हैं तो अच्छा लगता है, हिंदी बोलते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपका।
3: जी जी, थैंक यू।
4: दीपशिखा मैडम से नमस्कार मैडम।
0: जी नमस्ते अमित जी, बताइए।
4: मैडम, आपसे मेरा प्रश्न ये है, जैसे जीडीपी का आंकड़े पे तो आप लोगों ने चर्चा कर ही लिया है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है मैम कि अगर हम 2047 में विकसित अर्थव्यवस्था की मतलब हम ने टारगेट ले रखा है, तो क्या ये जीडीपी का वृद्धि दर इतने प्रतिशत के हिसाब से हम 2047 में विकसित भारत बन पाएंगे, या वृद्धि दर और तेज करने की जरूरत है? अगर है तो किन सेक्टरों पर ज्यादा फोकस करना? धन्यवाद।
0: अमित जी, देखिए, अगर भारत को एक विकसित देश बनना है तो उसके लिए चहुमुखी विकास जरूरी होगा। विकसित देश बनने के लिए आपको वृद्धि ग्रोथ तो चाहिए ही, आपकी अर्थव्यवस्था को बढ़ना तो है, लेकिन उसके साथ साथ और भी जो फैक्टर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, उन पर भी बहुत काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने ये लक्ष्य तय किया हुआ है और इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है।
1: जी, अगली खबर है अब एशियाई बाजारों की। एशियाई बाजारों में साउथ कोरिया का कोस्पी लगभग 1% पढ़कर बंद हुआ, जबकि जापान का निक्केई 0.1% नीचे आ गया।
3: And let's take a look at the oil prices. Well, global crude oil prices rose over 3% today amid renewed geopolitical tensions. United States struck Iranian military targets on Larak Island in the Strait of Hormuz last night, and Tehran said it had retaliated. Brent crude was trading 3% up at $90.78 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 3.5% higher at $86.31 per barrel when reports last came in.
1: और सोने और चांदी का हाल तो देखे, लेकिन दीपशिखा ये जो अभी लालिमा बता रही थी क्रूड ऑयल कच्चे तेल की बातें, जब तक लगता है जो अशांति है, और हम अभी पश्चिम एशिया की बात करें उससे भी पहले से अगर हम देखें तो जो सीधे हमारे क्रूड सप्लाई को उतना प्रभावित नहीं कर रहा था रूस और यूक्रेन, उसके बाद और अभी ये पश्चिम एशिया तो खैर पता नहीं रह रह कर ये चल ही रहा है। इसके साथ लगता है अब कहाँ, लेकिन भारत ने इस पूरे प्रकरण में अगर हम देखें जितनी लोगों को आशंकाएं थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा इतनी क्राइसिस जाएगी, लेकिन भारत ने इसको बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया है।
0: बहुत, आप देखिए जो जीडीपी के आंकड़े हैं इसमें इतनी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। आप देखिए सप्लाई चेन हमारी, उसको बना के रखना, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, उनका सप्लाई जो है उनके इनपुट्स का, रॉ मटेरियल का, हॉर्मुज से आता है, उस क्षेत्र से आता था। तो उसके बावजूद हम जो है सप्लाई कायम रख पाए, अर्थव्यवस्था को जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट दे पाए, और इसीलिए अर्थव्यवस्था अभी मजबूत स्थिति में है, खड़ी हुई है। और एक बहुत ही गहरा संकट था उस वक्त, अब हालांकि अभी भी स्थिति बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये संकट जो है उस हद तक थोड़ा सप्लाईज वहाँ से आने लगा है, तो हो सकता है कि आगे जो है अर्थव्यवस्था और मजबूत बने, आगे चलकर
1: बेहतर प्रदर्शन करें।
0: हालांकि मॉनसून को लेके आशंकाएं हैं कि कंजम्पशन इंपैक्ट करेगा, लेकिन अब स्प्रेड जो है काफी हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि हम शायद अगला क्वार्टर भी हमारा उतना ही मजबूत रहे।
3: And you think, Deepshika, we did the wise thing to diversify our sources of oil because of the sticky point at Strait of Hormuz, not just for oil, but for many other things we import. We just diversified and moved to other countries and not got stuck at one or two as before.
0: Absolutely, Lalima. And I think this is what India did. You know, we are trying to cut dependence on single source of supply, not just for energy, but for all raw materials. And that is what government is also advising, suggesting to the industry, that they should not be dependent on single source for their supplies. So have a wider basket of suppliers so that if something happens to one part of, you know, in one area of geography, your supplies are still sort of remain.
3: Yes.
1: जी, और देखिए सोने चांदी का हाल। भारतीय सर्राफा बाजार में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 2.3% से ज्यादा गिरकर 155,835 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। वहीं चांदी की कीमत 2.7% नीचे 237,199 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और दीपशिखा, आज वक्त इतना ही है, नहीं तो सवाल और भी हैं चर्चा करने के लिए, विषय भी बहुत सारे हैं।
0: धन्यवाद सुबोध जी,
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आंकड़े जो हैं वो वैसे ही आई थिंक अपलिफ्ट कर रहे हैं,
1: सबका मूड अच्छा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices decline. Sensex falls over 300 points. Nifty settles below 24,100. India's real GDP grows by 7.8% in first quarter of current financial year. And global crude oil prices surge. And friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang.

0: एंड मैं कोयंका सुबोध मिश्र साइनिंग ऑफ. नमस्कार.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
2: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं रितिका स्वागत करती हूं आप सभी का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन समेत एससीओ के कई अन्य नेताओं ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस के बीच सहयोग का नई ऊंचाइयों तक पहुंचना बहुत संतोष का विषय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कुछ ही दिनों में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली

कहते हैं कुछ रिश्ते वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर गुजरते साल के साथ और गहरे और खूबसूरत होते जाते हैं। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, सीधे दिल में उतर जाती हैं। और कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनकी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत होती है उनकी कहानी। आज ऐसी ही एक कहानी का जश्न है। आज एक ऐसे साथी का जन्मदिन है जो पिछले 25 वर्षों से आपकी सुबहों, आपकी दोपहरों, आपकी शामों और आपकी रातों का हिस्सा बना हुआ है। जी हाँ, आज FM गोल्ड का जन्मदिन है। 1 सितंबर 2001 वो तारीख जब FM गोल्ड ने अपने सफर की शुरुआत की थी, और आज 1 सितंबर 2026 देखते ही देखते इस सफर को पूरे हो गए हैं 25 साल। 25 साल यानी ढाई दशक की यादें, हजारों गीत, अनगिनत किस्से, सैकड़ों आवाजें और सबसे बढ़कर आपका साथ। आज FM गोल्ड के इस खास दिन पर हम सिर्फ जन्मदिन ही नहीं मना रहे, हम मना रहे हैं इस रिश्ते का जश्न जो 25 वर्षों से FM गोल्ड और उसके श्रोताओं के बीच बना हुआ है। आज अपनी 25वीं सालगिरह पर हम अपने सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस रिश्ते को इतने वर्षों तक प्यार दिया। ये रिश्ता यूं ही बना रहे, गीत यूं ही बजते रहे और FM गोल्ड की आवाज हमेशा आपके दिलों तक पहुंचती रहे। वक्त हुआ है 12:12 और 42 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

धरती कहे पुकार के फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इसे लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कहीं दूर निकल जाएं। इस पंक्ति में जैसे रोजमर्रा की भागदौड़ से थोड़ी देर दूर जाने, सुकून के किसी अनजान ठिकाने को तलाशने की चाह छिपी है, जहां ना कोई जल्दबाजी हो ना कोई शिकवा, बस साथ हो खुला आसमान हो और रास्तों में बिखरी हुई खामोशियां। कभी कभी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए सचमुच कहीं दूर निकल जाना चाहिए अपने ही ख्यालों के साथ। आपने सुना दूसरा आदमी फिल्म का गाना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

कामचोर फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया राजेश रोशन ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 40 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

कुछ रिश्ते जिंदगी में यूं ही नहीं होते, वो हमारे सफर को अर्थ देते हैं, हमारी खामोशियों को आवाज और हमारी तन्हाइयों को एक खूबसूरत साथ। सोचिए, अगर उस सफर में कोई अपना हमराह ही ना होता तो शायद रास्ते वहीं होते, मंजिलें भी वहीं। मगर सफर में वो खूबसूरती कहाँ होती, तभी तो दिल से निकलता है, ऐसा ना होता कुछ भी यहाँ ना होता, मेरे हमराही अगर तुम न होते। आपने जमीन आसमान फिल्म का गाना सुना, लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

जब किसी के चेहरे में चांदनी, उसकी जुल्फों में शाम और उसकी आंखों में समंदर नजर आने लगे, मोहब्बत की शुरुआत अक्सर इसी सवाल से होती है, आखिर ये खूबसूरत अजनबी है कौन? और शायद इसी मासूम जिज्ञासा में प्यार की पूरी कहानी छिपी होती है। सागर फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज में, जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया आर डी बर्मन ने।

ये प्यारा सा गीत रिश्तों की उस अनकही डोर की बात करता है जिसे नाम देना आसान नहीं होता। कुछ रिश्ते बिना किसी वादे और बिना किसी पहचान के भी दिल के बेहद करीब हो जाते हैं। बस साथ होने का एहसास ही उन्हें खास बना देता है, एक ऐसा बंधन जो अनजाना होकर भी मन को अपना सा लगता है। एक दूजे के लिए फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हेलो, मैं हूं नासिर अब्दुल्ला। आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 पर। आज FM गोल्ड का बर्थडे है। आप सब सुनने वालों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्य दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकिन समेत SCO के कई नेता भाग ले रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज SCO के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के

0: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजिशकीन के साथ भी बिश्केक में द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने पश्चिम एशिया क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों की समीक्षा की। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने बताया कि बैठक में देश में हरित विकास को गति देने और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी पहलुओं को मजबूत करने पर चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्य पर ध्यान दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री सूर्य घर, पीएम कुसुम और पीएम जनमन जैसी केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी के किनारों के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में इबोला का प्रकोप गंभीर होता जा रहा है। नए आंकड़ों के अनुसार 6,041 मामलों की पुष्टि हुई है और 2,911 लोगों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे अब तक का सबसे तेजी से फैलने वाला इबोला प्रकोप बताया है। एएफसी अंडर 20 फुटबॉल एशियाई कप 2027 के क्वालिफायर में भारत ने सीरिया पर 1-0 से जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defense. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देता है। हमें एंडलेस वॉर से

वक्त हुआ है 1:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।

जिंदगी से भरी ये आंखें जब सामने हों तो उदासी भी ठहरने का बहाना ढूंढने लगे। इन आंखों की चमक में ऐसा जादू है कि इंसान तमाम शिकवों को भूलकर फिर से जीने की वजह तलाशने लगे। सफर फिल्म का ये गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। इंदेवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

आनंद फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। कभी कभी किसी की मौजूदगी हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाती है कि उसके बिना सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। मन कहीं ठहरता नहीं, दिल किसी और बात में लगता नहीं, बस एक ही एहसास भीतर गूंजता रहता है, ना जिया लागे ना, तेरे बिना मेरा कहीं जिया लागे ना।

नदिया किनारे की वो प्यारी सी शाम, हाथों में खनकते कंगन और दिल में किसी अनाड़ी साजन की मीठी सी उलझन। प्रेम शायद ऐसा ही होता है, जहां छोटी सी बात भी याद बन जाती है और हर खनक में किसी अपने की आहट सुनाई देने लगती है। अभिमान फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त प्रमोद पी माथुर बोल रहा हूँ। मैं सभी बहनों और भाइयों को और खास तौर से आकाशवाणी एफएम गोल्ड दिल्ली के उन सभी साथियों को जो आपके लिए इतने खूबसूरत प्रोग्राम पेश करते हैं, उन्हें भी एफएम गोल्ड के इस जन्मदिन के खास मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और कहता हूं कि आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड यूं ही आवाज की दुनिया की बुलंदियों की सीढ़ियां जो है ना चढ़ता ही जाए।

वक्त हुआ है 1:30 और ठीक 15 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

किसी के आने का इंतजार भी कितना खूबसूरत होता है। आंखें राह देखती हैं, दिल उम्मीद सजाए बैठा रहता है और वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता जाता है। बस मन यही पूछता रहता है, आखिर वो खास पल कब आएगा, जब इंतजार खत्म होगा और सपनों को उनका अपना हमसफर मिल जाएगा। आराधना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया एसडी बर्मन ने।

दिल भी बड़ी अजीब चीज़ है, इसे हमेशा अकेला रख पाना कहाँ मुमकिन होता है। जिंदगी की राह में कभी कोई अपना बनकर मिलता है, कभी कोई अनजान दिल के बेहद करीब आ जाता है, और फिर लगता है कि शायद किसी न किसी से कभी न कभी कहीं ना कहीं दिल लगाना ही पड़ता है। कश्मीर की कली फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। SH बिहारी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने।

0: कभी किसी गीत में शरारत होती है, कभी नज़ाकत और कभी किसी को करीब बुलाने की मासूम सी बेचैनी। ये गीत भी उसी चंचल अंदाज का खूबसूरत उदाहरण है, जहां सितारों से सजी शाम, किसी हसीन चेहरे की आहट और दिल की बेकरारी मिलकर माहौल को और भी रंगीन बना देती है। बस दिल कह उठता है, जरा नजदीक आइए, शायद इस बेचैन दिल को कुछ चैन मिल जाए। प्रिंस फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में।
1: इसे रंग बदल

इस रंग बदलती दुनिया में हर चेहरा वैसा नहीं होता जैसा पहली नजर में दिखाई देता है। जमाना बदलता है, लोगों के अंदाज बदलते हैं और कभी कभी नीयत भी बदल जाती है। इसलिए जरा संभल कर चलिए जनाब, क्योंकि खूबसूरती भले ही सादगी से सजी हो मगर दुनिया की नजर की नीयत हमेशा साफ हो ये जरूरी नहीं। राजकुमार फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

गाइड फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया एस डी बर्मन ने। वक्त हुआ है 1:55 और ठीक 17 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में वर्ल्ड नोमेड गेम्स के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किर्गिस्तान में हैं। उन्होंने खेलों में हिस्सा ले रहे भारतीय दल से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दी। वर्ल्ड नोमेड गेम्स का छठा संस्करण 31 अगस्त से 6 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत का 87 सदस्यीय दल इन खेलों में हिस्सा ले रहा है। उद्घाटन समारोह में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिस्कियन, एसएससीओ के कई नेता ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से अलग रूस, ईरान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ के 26वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों, व्यापार और निवेश, ऊर्जा और रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ना दोनों देशों का साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही दोनों देशों का मार्गदर्शक सिद्धांत रहेगा।
1: दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए हम मिलकर के काम कर रहे हैं। राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना, यही हम दोनों की सोच रही है और आगे भी यही हमारा मूल मंत्र होगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने यूक्रेन के मुद्दे पर लगातार चर्चा की है। उन्होंने कहा कि भारत शांति

0: शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और करता रहेगा।
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
0: वहीं राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर भारत रूस संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में कल नई दिल्ली में बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। ये समझौता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से चल रहे विवाद का समाधान हो गया है। कोलकाता में कल चार संगठनों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचारों को रोकने के लिए भारत सरकार से आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठनों ने शहरयार कबीर, प्रोफेसर डॉक्टर अबुल बरकत, वकील राणा दास गुप्ता और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के मामलों में न्याय सुनिश्चित करने की भी अपील की। संगठनों ने आरोप लगाया कि 5 अगस्त 2024 के राजनीतिक बदलाव के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 903 हो गई है, जबकि 4,247 से अधिक लोग लापता हैं। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास बर्फ और चट्टानों के ढहने और हिमस्खलन के कारण आई बाढ़ ने भोटे कोशी नदी के किनारे के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर, सड़कें और पुल नष्ट हो गए और पनबिजली परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi held bilateral talks with Russian President Vladimir Putin on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization SCO summit at Bishkek in Kyrgyz Republic yesterday. The discussions focused on key areas of India-Russia bilateral cooperation, including trade and investment, energy and defence. During the meeting, Prime Minister Modi said it was a matter of deep satisfaction that cooperation between India and Russia continued to scale new heights. On the Ukraine conflict, Prime Minister Modi said they must move from endless wars to ending wars, adding that India supports all efforts towards peace and will continue to do so.
1: यूक्रेन के विषय पर हम हमेशा चर्चा करते रहे हैं। भारत शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करता है और शांति के हर प्रयास के लिए आगे भी समर्थन करता रहेगा। युद्ध में बिताया एक एक दिन मानवता को पीछे धकेलता है और शांति की तरफ बढ़ाया एक एक कदम पूरी मानवता को नई आशा से भर देते हैं। हमें एंडलेस वॉर से एंड ऑफ वॉर उसी दिशा में जाना ही होगा जो मानवता की भलाई के लिए भी बहुत आवश्यक है।
2: During the meeting, the Prime Minister said all Indians are eager to welcome President Putin to the BRICS summit, which will be hosted in New Delhi in the coming days. President Vladimir Putin showed his satisfaction that Indian-Russian relations continue to strengthen on the basis of the principles of special and privileged partnership. Prime Minister Modi also held bilateral meetings with leaders of Iran, Kyrgyz Republic and Armenia yesterday. Mr. Modi and Iran President Dr. Masoud Pezeshkian, during their meeting, reviewed recent developments in the West Asia region and shared perspectives on the evolving situation. Mr. Modi expressed concern at the escalation of tensions in the region

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ।

प्रेम प्रतिज्ञा फिल्म का गाना आपने सुना, बप्पी लाहिड़ी और आशा भोसले की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। रात सुरमई सी है, आसमान पर चांद की हल्की सी रोशनी है और हवाओं में जैसे दिन भर की थकान को सुकून में बदल देने की फुर्सत। दिन की भागदौड़ थम गई है, आवाजें काफी धीमी हो गई हैं और दिल को अपने ही ख्यालों के साथ कुछ पल बिताने का मौका मिल गया है। ऐसी रातों में पुराने फिल्मी गीत और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। कोई धुन बीती हुई यादों का दरवाजा खोल देती है, कोई बोल चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं और कई गीत चुपचाप दिल की बात कह जाते हैं।

वक्त गुजर जाता है, मौसम बदल जाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ जाती है, मगर कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिल की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। कभी किसी गीत की धुन उन्हें फिर से जिंदा कर देती है, कभी कोई पुरानी तस्वीर उन दिनों की खुशबू लौटा लाती है। सच तो यही है, बीते हुए दिन लौट कर नहीं आते, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ उम्र भर चलती हैं। पुराना मंदिर फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। इसे लिखा अमित खन्ना ने और संगीत दिया अजीत सिंह ने।

इस रात की सुबह नहीं फिल्म से ये गाना आपने सुना। एमएम करीम और चित्रा की आवाज में निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया एमएम करीम ने।

नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त रजा मुराद। इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आप सभी सुनने वालों को FM गोल्ड के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

वक्त हुआ है 2:32 और ठीक 45 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई, मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

किसी की याद ने, किसी के इंतजार ने, कुछ अधूरे ख्वाबों ने, कुछ अनकहे प्यार ने हमें खामोश रहने कहां दिया, हर एहसास को अल्फाज देकर शायर बना दिया। ये इश्क नहीं आसा फिल्म से आपने ये गाना सुना अनवर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कभी कभी किसी अपने की आवाज में छुपे दो मीठे बोल ही दिल को सुकून देने के लिए काफी होते हैं। मोहब्बत में हर बार इजहार के लिए लंबे लंबे जुमलों की जरूरत नहीं होती। कभी एक प्यारी सी आवाज, एक अपनापन भरा लहजा और दो मीठे शब्द ही दिल को छू जाते हैं। सोहनी महिवाल फिल्म का ये गाना आपने सुना। आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा और संगीत दिया अनु मलिक ने।